माता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।

0: तारा कैक तारा कामनी पहरी पटोड़ा रंग चोड़ा भमे टोड़ा भामनी शनगार सजिले रूप रजिले भूलत जिले भानने भरपूर जोबन माय भामन कहे राधा कानने जी कहे राधा कानने जी कहे राधा
1: एवो श्रवण।